गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे।

मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सनबंध।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए अखरी नाम।

नाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

अन्ना के हाँ हाँ हाँ और सुनो हाँ एक एक परी थी क्या एक परी थी तोता परी हंसी वो बड़ी थी हाँ हंसी वो बड़ी थी गगन देश था उसका क्या गगन देश था उसका अजब भेष था उसका चले रात आगे सुनो सुनो बात आगे सुनो सुनो सुनो तो अरे अरे सुनो तो हाँ

अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई? और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ

I want to share something with you, and this does relate to other people listening in right now, other listeners listening in. So let me just clarify one thing. जो बात मैं करना जा रही हूँ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, काफी लोग के साथ होता है. लेकिन डिफरेंस ये है कि मैं वोकली शेयर करूंगी आपके साथ, एंड काफी लोग मन से छुपाते हैं. इट्स ओके, दैट्स फाइन. So as you know, I got back from this break I went to, right? For about 5 to 6 days, I was away in Mallorca. And basically, क्या हुआ था कि जहाँ मैं गई थी वहाँ पे एक शो था जो जहाँ मुझे होस्ट करना था, होस्ट किया. और हमने सोचा कि हम वापस सैटरडे को वापस लंदन आएंगे. मैंने तो ना बोला, मैंने कहा कि मैं वापस तो नहीं आऊँगी, मैं तो रहूँगी वहाँ पे. तो एक फ्रेंड ने बोला मुझे कि तू यहाँ आके क्या करोगे, कुछ है भी नहीं यहाँ पे, ऑफ पीक सीजन है तो लोग इतने नहीं है, भीड़ नहीं है, और जहाँ मुझे जाना था वो भी बंद था. तो वो बोलते तुम क्या करोगे. तो मैंने कहा कि जहां मैं जाऊंगी ना, आई मेक द मोस्ट ऑफ दैट मोमेंट. आई सेड टू हिम, आई मेक द मोस्ट ऑफ द मोमेंट. से फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक पूल में जा रही हूँ, राइट, जहां होटल में पूल था, अगर मैं वहां पे जाऊंगी ना, आई मेक द मोस्ट ऑफ इट. आई सनबेथ, आई रिलैक्स, आई ईट ऑल द लवली फूड देयर इज, आई मेक द मोस्ट ऑफ इट. मे बी टेक सम पिक्चर्स एज वेल, बट पिक्चर्स फॉर मी वाजंट दैट इंपॉर्टेंट. फिर मैंने कहा उनको कि मैं बीच पे जाऊंगी, बीच में मैं नदी में, आई गो एंड वॉक इन द सी, आई लव वॉकिंग इन सॉल्ट वाटर, आई फील इट्स रिलैक्सिंग. मैं मार्केट में जाऊंगी, देखूंगी कि क्या चीजें हैं यहाँ पे, मे बी आई वोंट बाय एनीथिंग, यू नो. सो आई वाज एक्सप्लेनिंग टू हिम. सो एनीवेज, वी बोथ वर टुगेदर एंड वी जस्ट टॉकिंग, एंड एवरी मोमेंट वी स्पेंड वी स्पोक अबाउट, सॉरी, वी ट्राई टू मेक एवरी पॉसिबल मोमेंट मेमोरेबल. And then I noticed something in myself. I slowed down a lot. I rested properly. I walked more. I think I mentioned before a couple of days back, when I said I was walking every day, average 10,000 steps every day. I ate less and I gave myself time to think clearly again. And I was thinking, my friend actually mujhe kaha ki actually tere life mein no, what you need a change. क्योंकि सालों से मैं ये सेम रूटीन कर रही हूँ, सालों से. एंड आई नो अ लॉट ऑफ लिसनर्स आर डूइंग द सेम रूटीन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड इट्स लाइक यू आर यूज्ड टू इट नाउ, यू वोंट मेक दैट चेंज बिकॉज यू आर टू कंफर्टेबल. द थिंग इज, चेंज डजंट यूजली अराइव व्हेन एवरीथिंग फील्स ईजी. It happens when we step outside the normal routine. It happens when we step outside habits and environments that keep us comfortable. And while comfort can feel very safe for us, staying there too long can stop us from growing into the person we're meant to become. Recovering from a brilliant holiday can give anyone time to reflect on that. आप holiday पे जाओगे, आप काफी कुछ सोचोगे, आप काफी कुछ बारे में सोचेंगे, आप ये कहेंगे कि यार मैं ये चीज क्यों हर रोज नहीं करता हूँ, मैं अभी ऐसे holiday आके क्यों करता हूँ. Because you're too comfortable in your routine. And somewhere in that stillness, you start reflecting on new avenues in life and what a fresh start could actually look like. Sometimes we think that growth only comes from being constantly busy, but often in the quieter moment, when you're by yourself, or when you're just doing nothing, or when you're just resting or relaxing, you then start realizing something needs to change in me. Stepping out of our comfort zone doesn't always mean doing something dramatic. Sometimes it simply means allowing ourselves to pause, reset, and be honest about what no longer serves us. Now think about this carefully. This holiday reminded me that change begins when we stop clinging to comfort and start becoming open to possibility. Aap holiday pe jaoge ya aap kuch, you know, kuch break pe jayenge, I'm sure you'll go on a break. And you realize when you get there, you're much happier, you're much calmer, because you're out of your normal routine. And maybe you'll then realize that you need a change. And when you go on this change, don't feel guilty about it. Just see it as a brand new journey, which you actually deserve and you need to go through. So my friend said to me yesterday, Kaj, look forward to all the new avenues you've got coming for you. Go on this journey and enjoy it. And I think you should do the same.

0: 0857484104
1: चौबीसों घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208 5748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
3: अच्छा कान्हा, क्यों जा रहे हो?
4: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
2: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
4: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
2: कृष्णा अवतारम इन सिनेमाज नियर यू।
4: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
5: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help two children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
6: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
7: New hits on Leica Radio.

0: भाई जिनका आपको इंतजार है वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी जगह इस हॉट सीट पर बैठी है आपकी अपनी सरिता सबरवाल। सबसे पहले थैंक्स डॉनी ब्रास्को थे लाइका रेडियो पर, और लाइका गोल पर थी काजल, और अब वहाँ है खुश और यहाँ है सरिता। आप कहाँ हैं? उम्मीद करती हूँ आवाज़ की दुनिया के दोस्तों जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू एंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और तिरकते हुए गाने तो चुन चुन कर लाई हूँ मैं। बाकी आपकी पसंद पर डिपेंड करता है कि आपकी पसंद की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम में भी कुछ न्यूज़ हेडलाइंस होंगी, किसी का बर्थडे मना लेंगे, वो फिल्में जो आज के दिन रिलीज़ हुई उनका कोई गीत हो जाएगा, एंड सबसे बड़ी बात तो चिंतन होगा 11 बजे की खबरों के बाद। चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं बैक टू बैक दो गीतों के साथ।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Back to back hits across the Leica Radio network.

0: किशोरदा के दो रूप देखे आपने इन गीतों में. पहले गीत थोड़ा सैड था एंड थोड़ा स्लो था और जिंदगी की हकीकत थी, और दूसरे गीत में भी जिंदगी की ही हकीकत थी और किशोरदा का अलग सा रूप था. बहुत प्यारे थे दोनों के दोनों गीत और उम्मीद करती हूँ दोनों गीतों को आपने पसंद किया. वैसी फिल्म का नाम बताने की जरूरत तो नहीं, पर फिर भी बता देती हूँ. बहुत से लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि किस फिल्म का गाना था. वेल, यादें तो ताज़ा किया कीजिए ना, देखा कीजिए, सोचा कीजिए कि कब देखी थी ये फिल्म, किसके साथ देखी थी, कब ये गाना बहुत फेमस हुआ था, और क्या आप भी इस गीत को गाया करते थे और किसके सामने गाया करते थे. बहुत सारी बातें जहन में आती हैं, तो क्या ऐसी ही बातें आपके जहन में भी आई तो ज़रूर बताइएगा. पहला गीत था सौतन फिल्म से, 1983 में आई थी ये फिल्म, और दूसरा गीत था जिंदगी एक सफर है सुहाना, किशोरदा की आवाज़ में गाया हुआ गीत अंदाज फिल्म से. सो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दोनों गीत राजेश खन्ना पर पिक्चराइज हुए थे. दूसरा गीत तो फॉर श्योर, बट पहला गीत सौतन का भी आई थिंक इट वॉज राजेश खन्ना. अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं. नंबर तो आपका जाना पहचाना है, इस नंबर के रास्ते आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज पर लिख कर भेज सकते हैं कि सरिता क्या कहा सौतन में राजेश खन्ना. हाँ थे टीना मुनीम के साथ एंड आई थिंक पद्मिनी कोल्हापुरी भी थी. यस, थोड़ी थोड़ी याददाश्त तेज हो रही है सरिता की. अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इस वक्त क्या रेट मिल रहा है पैसे का. यानी इंडिया अगर पैसे भेजना चाह रहे हैं तो SBI UK वाले क्या दे रहे हैं आपको.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई इंडिया में कहीं भी पैसे आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो बहुत आसान काम है. यू कैन गो टू SBI UK की ब्रांच में जा सकते हैं, किसी में ऑनलाइन कर सकते हैं और बाय यूजिंग द यूनो SBI UK मोबाइल ऐप. और आज का रेट क्या है मार्केट में वो भी आपको बता दें कि आज आपको ब्रिटिश पाउंड के बदले, ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले मिल सकते हैं 128 रुपीज़ एंड 25 पैसास. तो देर किस बात की है, डिपेंड तो ये करता है कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करा रहे हैं. जितना बड़ा अमाउंट होगा उतनी अच्छी आपको रेट भी मिलेगा.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Yeah. Like our radio.
3: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
3: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
3: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Leicester, it's time to celebrate.
5: Root Millers brings you the ultimate 50 Fest.
4: 50 days of giveaways worth a huge £50,000. We're talking gold coins,
5: LED TVs, designer saris and over 50 luxury hampers up for grabs.
4: Shop and you're automatically entered into our lucky draw or discover hidden vouchers as you go.
5: Plus, instant rewards on fresh fruit and veg. Spend £5 and get a free hand wash.
4: £10 for a food chopper. £25 for a teapan or kadhai pan.
5: Root Millers, Melton Road, Leicester. 50 Fest, every shoppers a winner.
6: Hillaro અને Umbro જેવી acclaimed ગુજરાતી films ના national award winning director અભિષેક શાહ ફરી એકવાર લઈને આવ્યા છે એક ઇમોશનલ કોમેડી.
7: તમારું તો જિંદગી છે કે ફિલ્મ ની વાર્તા.
6: એક ઇવ હાર્ટ જે કઈ ફીલ કરતું નહોતું.
7: મારી વાર્તા અધૂરી છે ભાઈ.
6: But one beat and everything changed.
8: તમારું હૃદય ધબકારો ચૂકી જાય છે.
6: ધબકારો સ્ટારિંગ દેવેન ભોજાની અને આર્જવ દેસાઈ.
9: લોકેશન અહીંના કરેલા અહીં જ ભોગવવાના છે.
6: ઇન સિનેમાઝ નિયર યુ.
9: 105 શોઝ પૂરા કર્યા પછી હવે લેસ્ટરમાં આવી રહ્યું છે એક ધમાકેદાર ઇન્ટરનેશનલ ગુજરાતી કોમેડી નાટક
10: જેજ એન્ટરટેનમેન્ટ લઈને આવી રહ્યા છે સખણા રેજો હસબન્ડજી
9: રીના શાહ અને સમીર શાહ સાથે હાસ્યનો ફૂલ ડોઝ 28 જૂન પીપલ સેન્ટર લેસ્ટરમાં બે શાનદાર શોઝ બપોરે 8 વાગે અને સાંજે 7 વાગે ટિકિટ્સ બુકિંગ માટે કોલ કરો મિસ્ટર B07860280655 મુંબઈ સેન્ડવિચ સ્ટેશન 07834832249 અથવા eventbrite.co.uk સખણા રેજો હસબન્ડજી
11: Packed for the trip? Gifts? Passport?
12: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
11: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
12: Simzy?
11: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
13: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
14: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
15: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
16: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
17: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply... for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
18: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758 580 1801 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
19: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भी आपको नहीं लग रहा कि सरिता क्या पहले तीनों गीत बड़े मोटिवेशनल इंस्पायरिंग थे, क्या चिंतन सारा दिन चलने वाला है? नहीं, ऐसी बात नहीं है. इट हैपन टू बी कि जिंदगी पर गीत सामने आया और मैंने कहा कि नहीं, ये गाना तो प्ले करना ही चाहिए. और मुझे उम्मीद है कि इस गीत को भी आपने ज़रूर पसंद किया होगा, जिसे मैंने मिस्टर इंडिया फिल्म से लिया था. 1987 की फिल्म थी और ये भी किशोरदा की आवाज़ में. क्या बात है, पहले तीन गीत जिंदगी से रिले और तीनों गीत किशोरदा की आवाज में. उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया. आपके सारे मैसेजेस मेरे सामने हैं. थैंक यू एवर सो मच सुबह सुबह आप मेरा साथ देने के लिए. जल्दी से अपने अपने रेडियो सेट के सामने बैठ जाते हैं, या फिर वैसे सरिता तो यही कहती है, कान इस तरफ होने चाहिए, कान उधार चाहिए. बाकी जो काम आप घर के कर रहे हैं, अपने ऑफिस के कर रहे हैं, कहीं भी बैठे कर रहे हैं कोई भी काम, तो वो करते रहिए, सिर्फ और सिर्फ कान इस तरफ होने चाहिए. अब आपके कानों में कुछ न्यूज़ हो जाए तो न्यूज़ हेडलाइंस आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ. राइट भी, अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान में सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है और उसने कहा कि उसने होमर्स स्ट्रेट में अमरीकी जहाज़ों पर हुई ईरानी हमलों के जवाब में ये कदम उठाया है. वहीं ईरान का दावा है कि उसने मिसाइलें इसलिए दागी क्योंकि पहले एक ईरानी तेल टैंकर पर हमला किया गया था. पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल R.N. रवि ने वहाँ के विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया. राज्यपाल की ओर से आदेश जारी हो गया है एंड भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 की उपधारा 2 के खंड में से मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए कल ही उन्होंने प्रभावशाली पश्चिम बंगाल विधानसभा को उन्होंने भंग कर दिया. दरअसल पश्चिमी बंगाल विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य एक अद्भुत टकराव की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा था और विधानसभा चुनावों में ये कांग्रेस की हार के बाद ममता बनर्जी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने

0: से इनकार कर दिया था। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए 4 दिन हो चुके हैं और लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया कि सरकार कौन बनाएगा। सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली एकल पार्टी होने के नाते एक्टर विजय की तमिल का वेट्री खडम टीवी के ने तमिलनाडु के कार्यवाहक राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर को पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। लेकिन राज्यपाल अरलेकर ने सरकार गठन के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन की कमी का हवाला देते हुए विजय को आमंत्रित करने से इनकार कर दिया। इस संबंध में राजभवन में जारी प्रेस विज्ञापन से कहा गया है कि टीवी के नेता विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि सरकार गठन के लिए तमिलनाडु विधानसभा में जरूरी बहुमत का समर्थन अभी तक हासिल नहीं हुआ है। और अब मनोरंजन से जुड़ी हुई एक खबर हो जाए। कैंस में फिर दिखेगा बॉलीवुड हसीनाओं का रुतबा। ऐश्वर्या राय के अलावा 2 टॉप एक्ट्रेसेस दिखाएंगी फैशन का जलवा। फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है कैंस फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है और बॉलीवुड सितारे भी इसमें शिरकत करने के लिए तैयार हैं। 3 हसीनाओं का जलवा देखने को मिलेगा। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मी आयोजन में एक है कैंस फिल्म फेस्टिवल 2026 का आगाज होने जा रहा है 12th मई से 23rd मई तक। चलने वाले इस 79th महोत्सव में एक बार फिर से भारतीय सिनेमा की चमक दिखने को मिलेगी और इस साल कांस के रेड कार्पेट पर बॉलीवुड की कई दिग्गज अभिनेत्रियां अपनी अदाओं का जलवा बिखेरेंगी, जिसे लेकर प्रशंसकों और फिल्म जगत में भारी उत्साह है। कांस 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बॉलीवुड की 3 ग्लैमरस एक्ट्रेसेस तैयार हैं और इनमें से एक है कौन? ऐश्वर्या राय। दूसरी हो सकती है आलिया भट्ट और तीसरी अदिति राव हैत्री। सो ये थी कुछ एक मुख्य समाचार और बाकी के समाचार तो आप सुनेंगे ना टॉप ऑफ द आवर, तो सुनने के लिए तैयार है।
1: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: और जिंदगी से बाहर निकले अब मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाया हुआ ये गाना।
2: ओ, तुम

0: Jamaica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, a pound in your pocket can get you today. क्या क्या दे सकते हैं ये जान लीजिएगा. या कहाँ है सारी इन्फॉर्मेशन. चलिए कोई बात नहीं, ढूंढते हैं, मिल जाएगी. एंड ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूँ कि आज आपका एक पाउंड आपको क्या दिला सकता है. A pound in your pocket can get you Indian rupees. कितने Indian rupees? 128.70 पाकिस्तानी rupees, 379.81 बांग्लादेशी टका, 167.36 अफगानीज, 87.09 and US dollars 1.36.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Radio.
0: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
1: गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में है 111 pounds and 56 pence पर ग्राम.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio. ये है
0: Leica Radio. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: और भी आज के मैच के बारे में आपको बता दूं कि आज इंडियन प्रीमियर लीग का मैच होगा 3 बजे शुरू और डेली डेकन्स एंड केकेआर के बीच ये मैच होने वाला है. तो जैसे ही मैच शुरू होगा तो हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे.
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Leicester, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो Falcon Cash and Carry. Mustafa Basmati XXL Rice 40 LBS सिर्फ $24.99.
3: Hamza Samosas 3 for 10.
4: Top Star Fried Onions only 99p.
3: Suhana Masalas 2 for 150. Ramdev Namkeen 2 for 149.
4: Hira Gram Flour 179. Heinz Ketchup 279.
3: Kesar Mango Pearl 149. Full Makana 245. Falcon Cash and Carry.
4: 82 Assistant Street LE1 2JU. Yeah, Rowlett Hill LE54UN.
3: While stocks last.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फौरन का फोन मिलाएं 020-8839-0880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
8: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: Hulk हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
10: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
9: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
11: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
12: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
13: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
11: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
13: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
11: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
13: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
14: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
15: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads, where you don't know what's around the corner. Think, don't let your speed creep. Hey!

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: Liker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits.
2: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Like our radio sales on 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@likeourmedia.co.uk.
1: Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Badden weekdays at 4 p.m. Like

0: finalist at the Radio Academy Arias 2026. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: आइए एक नजर फिर से मौसम पर डालते हैं. लंदन और आसपास के इलाकों में लाइट क्लाउड्स एंड लाइट विंड्स. मैक्सिमम टेम्परेचर 19 एंड लो विल बी 9 एंड इट्स विंडी टुडे. एंड इन लेस्टर एंड मिडलैंड्स में लाइट रेन्स शावर्स एंड लाइट विंड्स. मैक्सिमम टेम्परेचर 17. अपने दिल के मौसम को अच्छा रखिए, बाहर का मौसम जैसा भी हो.
0: फॉर स्पेशल रेट्स टू इंडिया, पाकिस्तान, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand. Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Leica Radio. Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show. Leica Radio.
1: जी हाँ, रवि शर्मा जी का ही शो है और इस वक्त आपको भी इंतज़ार रहता है कि रवि जी प्रोग्राम में शामिल करेंगे चिंतन. ऐसा चिंतन, एक विचार, एक घटना, एक कहानी जो दिल को छू जाए और ज़िंदगी में बदलाव की लौ जला दे. तो मैं कोशिश कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरी कोशिश भी आप पसंद करेंगे.

0: विचारों का वो सफर जो बदलाव की ओर ले जाए, उसे ही कहते हैं चिंतन, जो हमें सोचने को मजबूर करे, जो हमें बदलने के लिए कहे। कभी कभी हम रियलाइज ही नहीं करते हैं कि जो भी डिफिकल्टीज हमारी जिंदगी में आती हैं, तो उनसे हम क्यों दूर भागना चाहते हैं। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिंदगी की भाग दौड़ में हम सब कहीं ना कहीं थक जाते हैं, कभी काम से, कभी हालात से, कभी लोगों से, और कभी कभी खुद से भी। एक छोटे से कस्बे में रहती थी मीरा, बहुत सीधी सादी, बहुत मेहनती, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, बूढ़ी माँ की दवाइयां, सब कुछ वही संभालती थी। पर एक बात थी, मीरा हमेशा मुस्कुराती रहती थी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी मुसीबतें आए, कितनी कठिनाइयां आए, वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। लोग पूछते, मीरा इतनी मुश्किलों में भी मुस्कुराती कैसे हो? वो बस इतना कहती, जब तक दिल में एक दीपक जल रहा है, अंधेरा कभी पूरा नहीं होता। एक दिन कस्बे में एक बड़ा मेला लगा, सभी वहां गए और मीरा भी अपने बच्चों को लेकर वहां गई। मेले में एक बूढ़ा कारीगर बैठा था और उसके सामने सैकड़ों दीपक यानी दिए रखे थे। हर दीपक अलग अलग, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई टेढ़ा, कोई टूटा हुआ, कोई चमकदार और कोई गंदा सा। मीरा ने पूछा, बाबा ये सब दीपक इतने अलग अलग क्यों हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा क्योंकि हर दीपक की अपनी कहानी है, कुछ टूटे हैं फिर भी जलते हैं, कुछ पुराने हैं पर रोशनी देते हैं, और कुछ बस किसी के इंतजार में है कि उन्हें कोई जला दे। मीरा ने एक छोटा सा, थोड़ा सा टूटा हुआ दीपक उठाया। बच्चों ने कहा, माँ ये क्यों, ये तो टूटा हुआ है। मीरा ने जवाब दिया, बेटा क्योंकि रोशनी दीपक की शक्ल नहीं देखती, वो तो बस जलने की हिम्मत देखती है। उसने दीपक यानी दिया खरीदा और घर ले आई। रात को जब सब सो रहे थे तो मीरा ने उस टूटे हुए दीपक में तेल डाला, बाती लगाई और उसे जला दिया। उस छोटी सी लौ ने कमरे को रोशन कर दिया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, वो बोली, शुक्र है मैं अभी भी जल रही हूं। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में कहीं ना कहीं टूटे हुए हिस्से होते हैं। कभी हालात हमें तोड़ते हैं, कभी लोग तोड़ते हैं, तो कभी वक्त। पर याद रखिए, टूटना हार नहीं है, बुझ जाना हार है। जब तक दिल में एक छोटी सी लौ भी बाकी है, जिंदगी में हमें फिर से रोशन कर सकती है। और आज
1: चिंतन, चिंतन,
0: और आज दिल से यही आवाज आ रही है कि रोशनी हमेशा लौट आती है।

और इस कहानी से जुड़ा हुआ मुझे एक गीत याद आता है। एक ऐसा गीत जो उम्मीद है, जो उम्मीद भी है, रोशनी भी है, हिम्मत भी है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि चलते रहना है और चलते रहने में ही जीत है। जो इंसान हिम्मत हार देता है, अपनी मुश्किलों से दूर दौड़ना चाहता है, वो लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। मुश्किलों से लड़ना, जिंदगी की हर चुनौती को हिम्मत से ओवरकम करना, यही जिंदगी है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। ये सिर्फ एक धुन नहीं है, ये जिंदगी का फलसफा है।

0: ये था आज का चिंतन। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये सिर्फ एक धुन नहीं, ये जिंदगी का फलसफा है। हम सब की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि बस अब नहीं हो पाएगा, रास्ता लंबा है, थकान ज्यादा है और उम्मीद कहीं खो गई है। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी हमें कभी भी एक ही जगह रुकने के लिए नहीं बनी। वो हमें धकेलती है, गिराती है, पर उठना भी सिखाती है। अभी जो कहानी हमने सुनी उस टूटे हुए दीपक की, वो हम सब की कहानी है। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा दीपक जल रहा है। कभी लौ तेज हो जाती है तो कभी धीमी, पर जब तक वो जल रही है, वो लौ जल रही है, अंधेरा हमें छू नहीं सकता। और ये गीत हमें याद दिलाता है कि हारना तब है जब हम चलना छोड़ दें, वरना हर कदम चाहे छोटा ही क्यों ना हो हमें रोशनी के और करीब ले जाता है। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, खुद पर होती है। थोड़ी सी रोशनी भी काफी है अगर दिल उसे अपनाने को तैयार हो। थोड़ी सी रोशनी भी काफ़ी है अगर दिल उसे अपनाने को तैयार हो। जिंदगी कभी अंधेरी नहीं होती, बस हम कभी कभी आंखें बंद कर लेते हैं। आज के चिंतन के साथ जुड़ा हुआ गीत भी बहुत खूबसूरत था और आपने बहुत दफ़ा सुना ये गीत, हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। फिल्म इम्तिहान से चुना था, किशोर दा की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत था। लेकिन इसके साथ मैंने एक और गीत प्ले करना चाहा था, चलिए वो लेटर ऑन इसी प्रोग्राम में अभी करती हूँ थोड़ी ही देर में। पर थैंक यू सो मच, आपके इतने सारे मैसेजेस हैं मेरे सामने, मैं बता नहीं सकती। लेकिन जिन्होंने भी मुझे मैसेज लिखकर भेजा है कि सरिता बहुत सुंदर चिंतन था, बहुत प्यारा गीत है और आपने जिस तरह से कहानी सुनाई वो भी बहुत अच्छी लगी, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई SBI UK के जरिए अगर आप पैसे इंडिया भिजवाना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है। You can go to the branch, you can go online और आप अपनी टेलीफोन ऐप से भी Yono SBI UK के ऐप के साथ पैसे ट्रांसफर करा सकते हैं। और इस वक्त बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले 128 rupees and 25 paisas.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Ye hai Laika Radio. Laika Radio. The wait is now over. The King of Melody. Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct, exclusive radio partner, Leica Radio.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी। मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 lbs सिर्फ 24.99.
3: हमजा समोसास 3 for 10.
4: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p.
3: सुहाना मसालास 2 for 150. रामदेव नमकीन 2 for 149.
4: हीरा ग्राम फ्लावर 179. हाइंस केचप 279.
3: केसर मैंगो पल 149. फुल मखाना 245. फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN.
3: While stocks last.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0 to 0 01484-9639-63-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
2: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
7: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
2: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
7: Also explore 2026 cruises
2: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're Atoll Protected.
8: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help two children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
9: Har crunchy bite mein ek khas ethnic swaad. Har fry am shape mein hai wo bachpan ki yaad.
10: Snack time hunger ko banaye aur bhi tasty with Jaymin's Fryams in different shapes and yummiest flavors like lemon chili mint, manchurian, masala, peri peri or shizwan with best quality and same ethnic taste.
9: Jaymin Fryams, available at your nearest ethnic grocery stores.
11: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
12: Yeh hai Leica Gold 2.

0: और भाई इसी के साथ मैं ये कहूंगी कि ये गीत और फिर कुछ मैसेजेस हैं, मैसेजेस के बाद एक और गाना और फिर हम पहुंचेंगे नेक्स्ट आवर में, दैट विल बी द फाइनल आवर, और फिर एक बजे तक मेरा और आपका साथ है एंड देन बाली जी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए। मेरे वो साथी जो बड़े प्यार से मुझे मैसेजेस भेजते रहे, तहे दिल से उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ऐसे ही अपने मैसेजेस भेजते रहें।
1: Like a radio.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: Ciao.

0: finalist at the Radio Academy Arias 2026. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: नजर आज के मौसम पर डालते हैं. आज टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस और धूप भी निकली हुई है. आपके दिल का मौसम कैसा है? अपने दिल के मौसम को अच्छा रखिए, बाहर का मौसम जैसा भी हो.
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 208-574-8410. Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show.
1: रवि शर्मा जी का ही शो है, लेकिन इस हॉट सीट पर आज बैठी है सरिता सबरवाल. उम्मीद करती हूँ आज भी मेरा प्रोग्राम आपने पसंद किया. मंडे होपफुली रवि जी विल बी बैक, तो अपनी हॉट सीट को संभालेंगे और मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी मंडे को बाली जी के प्रोग्राम में. लेकिन उससे पहले सैटरडे एंड संडे मैं अपना शो करने के लिए 4 till 7 आपकी सेवा में हाजिर रहूंगी. सुनते
0: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. L-Y-C-A.

0: इस हफ्ते की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक रही आशा पारिक जी। इनके फिल्मों के बहुत से गीत आपने सुने, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, लेकिन मैंने आज का गीत जो चुना था वो था फिल्म जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, और ये नासिर हुसैन साहब ने डायरेक्ट की थी। फिल्म के हीरो कौन थे याद है आपको? देवानंद साहब। बहुत खूबसूरत गीत था, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। और ऐसे ही कल के प्रोग्राम में भी, जी हाँ मैं कल आ रही हूँ ना 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आपका साथ देने के लिए, तो कल के प्रोग्राम में भी एक अच्छा सा गीत जरूर चुनूंगी आशा पारिक जी का। सुनते रहिए, इसी तरह से इंजॉय करते रहिएगा।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Laika Radio.
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: ये आपको बता दें कि आज किसका मैच चल रहा है आईपीएल में. अरुण जेटली स्टेडियम में हो रहा है ये मैच जो दिल्ली में है, और दिल्ली कैपिटल्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच है ये मैच. एंड 3 बजे शुरू होगा. एंड बाली जी फिर आपको अपडेट देते रहेंगे.
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: इस हफ्ते मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. रवि जी की जगह मैंने इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाया, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातचीत, मेरे चुने गीत, मेरे चिंतन आपको पसंद आए. नेक्स्ट वीक मंडे से मैं बाली जी को कवर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले इस वीकेंड पे मेरी आपसे मुलाकात होगी. आपका पूरा दिन बहुत अच्छा बीते, आपके सोचे हुए काम पूरे हों. इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहिए. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ लवली एंड सुपर्ब वीकेंड.
1: दिस इज लाइका रेडियो.

0: Disha Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash and Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
2: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
1: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
2: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
3: आतिफ असलम लाइव इन द UK.
4: O2 London on Sunday the 14th of June.
3: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner Leica Radio.
5: Leica Radio Network. Proud hospitality partner Ragasan.
6: Punjab the biggest tunes. Not

लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। ये है लाइका गोल्ड।

Oh, wow. And I got some good news for you here. And that is, हमारे दोस्त है सुरेश कुमार. जी हाँ, हर साल लेकर आते हैं Crazy for Kishore. And calling all Kishore Kumar fans, a special musical night featuring Ketan, Indrani, Sanjay and the 515 band. It takes place on Friday, 19th of June. Friday, 19th of June at the Prince Regent Hotel, Chigwell, Essex. Exclusive radio partners are Leica Gold Radio. और ये शो कभी मिस करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि कंपेयर होंगे अरुणवा चक्रवर्ती. एंड देन वी गॉट लाइक आई रिपीट द वेन्यू, द प्रिंस रीजेंट होटल, मैनर रोड, चिगवेल, एसेक्स, IG8 8AE. And www.eventbrite.co.uk. You can book online on this one. And there is a number you can call, 07908-345-984. Yes, Ketan, Indrani and Sanjay. Crazy for Kishore.

अखियों के झरोखों से 1978 की फिल्म एंड व्हाट लवली म्यूजिक देयर इज, और हेमलता जी और शैलेंद्र सिंह ने क्या गाया. और आज रात को तो एक हंगामा होने वाला है. हंगामा क्या होने वाला है, ओ माय गॉड, मैं क्या बताऊं आपको. थ्री बिग वाला बर्थडे, यू नो आवर वंडरफुल लिसनर एंड अ वंडरफुल यू कैन से person who is not only a great listener of Laika Gold but also a close buddy of ours, and that's Kishore Pandya and Farhat Hussain, who has been bringing Dhuadhar shows for so many years to us. Farhat Hussain and Prakash Bhai PTC, that's right, that's from Kalyanji Anandji, that's Anandji Bhai's family. Yes, his son-in-law, that's Prakash Bhai PTC. All three of them celebrating Happy Wala birthday. And they are all celebrating at Ashwin Bhai's Videorama. That's right, the right place to celebrate. And he has invited me, Raj Vardhanji, Kamlesh Bhai, and all the UK promoters and VVIP guests, and Irfan Bhai Musa from Houston, and promoter and owner of a radio station. That's from Houston all the way. And it's going to be hangama there tonight. Of course, I'll try to get there. But then, let's put it this way. Happy birthday to all the three. And ek dosti wala gana to banta hi hai, naturally. And बॉब ने इतना अच्छा मैसेज भेजा, और विजय बोला ने, और अनवर भाई ने, तस्लीम ने, लाइका गोल्ड टीम, पूरी टीम ने मैसेज भेजा है उनको हैप्पी बर्थडे के लिए. सो विश यू अ वेरी हैप्पी द बर्थडे विद दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, मेरी दोस्ती मेरा प्यार.

0: Wow, these songs are so evergreen, aren't they? Any music that you get from the film Carvaan is always appealing, isn't it? Bhuli Bisri Yaade, are you ready for some competition? Yes, we are going to do a competition for this beautiful show. Kal maine ek phone call mara, and that was Veda, who had come into on our radio station on air, and she sang a few songs. And now I'm going to call somebody, but I hope he will be available. Actually, the show is Bhuli Bisri Yaade, Trilok Sharma and Veda. It's a wonderful friend of all of us called Bharat Shah. Bharat Shah is a wonderful personality who has always supported Trilok Sharma and Veda and many other artists in the UK. So Bharat Shah is presenting Trilok Sharma and Veda in Bhuli Bisri Yaade. Ab aap puchenge kahan pe hai? Usse pehle aapko bata dun ke live orchestra by Bhavin Mehta. Bhavin Mehta is a very talented musician with his orchestra. And in the orchestra there is Mittal Purohit. Yes, Mittal Purohit. Purohit jab naam aata hai, to humare listeners bhi to hai. Hai na? Dilip aur Charu, unka beta. And we got Farnaz on the guitar, and we got Evans on the octopad, and we got Bhavin himself on the keyboard, supported by Veda, of course. Saturday, 9th of May, that is tomorrow. And I, aapka khadim, Bali Brahmbhatt, main comparing kar raha hoon ye show. And it is a show of shows, believe you me. Tickets are available from Videorama. Ashwin ko phone karoge on 07976-723-892. Ashwin bhai is also available on landline 0208-907-0116. That is Videorama. And of course, you can have Bharat Shah's number as well, 07971-844-493. 07971-844-493. And we have tickets that are really going so fast. I think the last number that I heard was 280 gone. So I think 20 ek ticket baki rahi hongi. So last minute pe aapko bhag daudna karna pade. Is competition mein bhag lijiyega. And it's been sponsored by Masala Mart, Taste of Kenya, SBI UK, Gayatri, and of course Laika Gold. Yes, ye show miss mat karna. Aur main try karta hoon to call a wonderful person who might sing a few songs, and that is none other than bata do nahi, pehle phone lagate hain, phone laga ke fir try karte hain ke naam bataye. Let's see. Yes, it's Trilok Sharma on Like a Gold. You are on air, my brother.
1: Thank you, Bali bhai.
0: Congratulations for this beautiful show that you are bringing. And log badi betabi se intezar kar rahe hain ki aap hame bataye kal ke show ke bare mein.
1: Kal ek hum program kar rahe hain Bhuli Bisri Yaade, jisme हम लोग गाने वाले हैं ओल्ड सॉन्ग्स, मुकेश जी के, रफी साहब के, तलत महमूद जी के, मन्ना डे साहब के, और जितने भी लेजेंड्स हैं हमारे,
0: किशोरदा
1: के ऊपर है, इतने लोगों के हम लोग गाने वाले हैं.
0: हेमंत कुमार के गाने हैं,
1: हेमंत कुमार जी के भी हैं,
0: वाह,
1: गाने हैं इसमें.
0: कल वेदा जी ने बहुत अच्छा मतलब दो तीन लाइनें हमको सुनाई थी. आप भी हमको, अभी आपने इतने सिंगरों का नाम दिया राइट, तो सबकी एक वन लाइनर हमें दीजिए ना.
1: ठीक है.
0: दिस इज त्रिलोक शर्मा बाय द वे टू एवरीबडी, ही इज ऑन एयर एंड टुमारो ही इज डूइंग दिस ब्यूटीफुल शो एट अल्बर्टन. मैं एड्रेस सब देता हूँ आपको. यस, अल्बर्टन स्टेशन के बाजू वाला जो स्कूल है ना, वहां पे है. क्या स्कूल का नाम क्या है?
1: अल्बर्टन कम्युनिटी स्कूल.
0: हाँ, अल्बर्टन कम्युनिटी स्कूल पे अभी 5 बजे दरवाजा खुल जाएगा और फिर उसके बाद 6 बजे डिनर होगा और 6 से 8 आराम से बैठ के डिनर, डिजर्ट सब कुछ खाइएगा और 8 बजे शो शुरू हो जाएगा। तो टिकट्स कितने की है?
1: £20
0: वाओ, विद फूड, सो डिनर के साथ, मतलब इतना शानदार शो विद द ब्यूटीफुल ऑर्केस्ट्रा एंड आई विल बी एंकरिंग विद यू, aren't I?
1: Oh yes.
0: ओके, एक काम करो प्लीज, वन लाइनर सुना दो, 2-3 सिंगरों के।
1: ठीक है, मैं पहले रफी साहब को सुनाता हूँ।
0: यस प्लीज।
1: दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन।
0: वाह, क्या गाना है
1: मुकेश जी का। इन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से।
0: वाह,
1: हेमंत कुमार।
0: ओके।
1: अदितीय दिल ने कहा वो तुम, झूमती बहार है वो तुम,
0: प्यार से पुकार लो जहां हो तुम,
1: प्यार से पुकार लो जहां।
0: अनदर हिट, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और एक और हो जाए किशोरदा।
1: किशोरदा का गाता हूँ, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
0: वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। त्रिलोक जी, मैं एक ही बात कहता हूँ कि ऑडियंस आपको क्या कहना चाहती है, तालियों से स्वागत कर रही है। अभी मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आप जितने भी गाने गाते हो स्टेज पे, इतने सालों से मैंने देखा है 1000-2000 गानों से ऊपर, आप सब जबानी है, आपके दिमाग से आप गा लेते हो विदाउट एनी पीस ऑफ पेपर या मोबाइल, कुछ भी यूज किए बगैर, कैसे करते हो?
1: मेरे को बस ऊपर वाले की देन है।
0: वाओ वाओ, ये भी देखने वाली चीज है। सो वेदा जी के साथ रिहर्सल सब चल रहे हैं ना?
1: सब हो गया है, सब वेट कर रहे हैं आप लोगों की।
0: फैंटास्टिक,
1: शो की शोभा बढ़ाएं।
0: हाँ जी, That's right. So, एक कॉम्पिटिशन करने वाला हूँ जिसमें आपका नाम होगा त्रिलोक। Everybody has to type त्रिलोक, TRILOK, with your full name and telephone number. And end of the hour, त्रिलोक जी is going to choose a winner. मैं आपको सारी कॉपीज, जितने भी लोग यहाँ कॉम्पिटिशन में भाग लेंगे वो मैं आपको फॉरवर्ड करता रहूँगा। And nearer 4 o'clock, you have to give me a name of a winner who will get 2 tickets. थैंक यू त्रिलोक जी, बहुत अच्छा लगा। एंड कल तो हमारी मुलाकात होने ही वाली है, सो ऑल द बेस्ट टू यू।
1: ओके, सी यू टुमारो बालीवाल।
0: चीयर्स। एंड स्पेशल थैंक्स टू कमलेश भाई, हु हैज बीन वेरी वेरी हेल्पफुल, हमारे मार्केटिंग हेड, हु हैज बीन वेरी वेरी हेल्पफुल इन ऑर्डर टू डू दीज इंटरव्यूज एंड अनाउंसमेंट्स।
1: थैंक यू बाली भाई एंड कमलेश भाई।
0: चीयर्स, ऑल द बेस्ट।
1: ओके, टेक केयर,
0: बाय बाय। And wow, I'm looking forward to those songs with the live orchestra and sare gaane zabani inko yaad hai. So do get into this competition and just write Trilok and then your full name and telephone number and you might be lucky to get 2 tickets.
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to £128.25. £1 in British sterling today could get you up to 128 8.25. The rates keep changing. The latest rate is 128.25 Indian rupees for a British sterling pound. Remember to make your transfers via branch, online, or by using the Yono SBI UK mobile app.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is Leica Radio.
3: You're listening to Bali Brahmert in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you. Lister, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो Falcon Cash and Carry. Mustafa Basmati XXL Rice 40 lbs सिर्फ $24.99.
3: Hamza Samosas 3 for $10.
4: Top Star Fried Onions only 99p.
3: Suhana Masalas 2 for $150. Ramdev Namkeen 2 for $149.
4: Hira Gram Flour 179. Heinz Ketchup 279.
3: Kesar Mango Pearl 149. Full Makana 245. Falcon Cash and Carry
4: 82 Assistant Street LE1 2JU या Rowlatt's Hill LE54U.
3: While stocks last.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
8: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
7: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
8: Also explore 2026 cruises.
7: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're atoll protected.
9: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
10: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
11: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
12: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
13: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
2: Leicester Mellor is back with exclusive radio partner Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
14: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
15: Kuch exciting khane ka man hai? To aao, Egg Junction Leicester. Yahan milega sizzling egg keema, flavorful boil tikka rice aur special veg starters. Sab ke liye kuch na kuch hai. 62 to 64 Belgrave Road, LE4 5AS par. Chahe dine in karo, take away low ya Uber Eats or Deliveroo se mangwao. Call kijiye 0116-332-5100. Egg Junction, jo Wembley aur Kingsbury mein to hai, ab Leicester mein, jahan har bite hai extraordinary.
16: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 Belgrave Road, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड मिमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
2: Listen back to your favorite shows by logging on to LaikaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Did you know that Laika Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Laika Radio mobile app. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज आशा पारेख. एंड इस फिल्म के अंदर हीरो मर जाता है एट द एंड, तो फर्स्ट वीक में इतना हंगामा हो गया पब्लिक में कि राजेश खन्ना को मार डाला इन्होंने हीरो को. तो फिर इन्होंने सेकेंड वीक में स्टोरी चेंज कर डाली और हैप्पी एंडिंग कर दिया. द हीरो इज अलाइव विद द हीरोइन. यह है बहारों के सपने, उसकी स्टोरी. अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक आशा पारेख.

0: Disha Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything and this one is a villa.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
6: T's and C's apply.
7: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जेमिन फूड्स
8: जस्ट एड हॉट वाटर वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्टी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी शीरा पोहा भाजी वेज बिरयानी दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट
7: जीरो मेस नो स्ट्रेस सेम एथनिक टेस्ट विद जेमिन फूड्स
9: ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ
10: ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਲਾਈਵ ਇਨ ਦ ਯੂਕੇ
11: ਸੋਚਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਵੋ
12: To the O2 London on Sunday the 14th of June.
10: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio.
13: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of 4 amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for 2 to Barcelona, a Michelin star dinner for 2 people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
14: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से
15: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है
16: खुद से भी ज्यादा
14: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में
16: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है
14: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707 स्काई ग्लास 714 वर्जन मीडिया 809 BT394
17: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions. Especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
18: Listen back to your favorite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Leica Radio. Finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: मोहब्बत की दास्तान तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर। जी टीवी HD पर देखिए एक नई कहानी।
1: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
0: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
1: दिल तो टूट पे किया,
0: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
2: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
0: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे जी टीवी HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394।
3: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HeartyHanks.com today. Hearty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HeartyHanks.com today.
4: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple, Amritsar and more.
1: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra tour.
0: Also explore 2026 cruises.
1: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162-167-225. We're Atoll Protective.
2: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
3: अच्छा कान्हा, क्यों जा रहे हो?
4: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
2: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
4: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
2: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
4: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
5: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
6: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: So once again, wishing you a very, very, very happy birthday. May your years ahead be filled with love, light and happiness.
1: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Radio Wally, bringing you the freshest Fri-yay flashbacks.
3: Like a radio.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danu. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery business. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागस एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasun.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
8: लेस्टर, द बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ द ईयर इज हियर.
6: 50 Fest at Root Millers, powered by Kalyan Jewelers,
8: Kavya Silks,
6: Rafiq Catering
8: and Jungle Club,
6: Glozo,
8: Mars, Dreams
6: and Neslo Estate Agents.
8: Join the fun with games, dancing and live anchoring and walk away with amazing prizes. Spend £50 for 1 kg of ghee or £200 for 15 snacks of sugar.
6: Plus 2,000 more Root Packs hidden vouchers. All our customers are winners. With £50,000 in prizes to be won, this is one event you can't miss. Root Millers on Melton Road, Leicester.
9: Har crunchy bite mein ek khas ethnic स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद.
10: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट.
9: जेमिन फ्राइम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
11: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
12: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल. मिलिए अनुपमा से.
6: अनुपमा मंडे टू संडे एट 8:30 PM ओनली ऑन उत्सव प्लस. उत्सव प्लस, स्काई चैनल 705, वेजी मीडिया 803 एंड EE392.
13: प्रेजेंटेड बाय साउथ होल ट्रैवल, पावर्ड बाय टाटा टी प्रीमियम एंड वेल मैन एंड वेल वुमन बाय विटाबायोटिक्स.
14: Punjab the biggest tunes non-stop.

0: की तो आवाज भी गुड़ की तरह गुड़ से भी मीठी है। हर्षदीप कौर, दिस वन फ्रॉम द मूवी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। नवराज हंस ऑन द वोकल्स विद हर, सच अ ब्यूटीफुल बिग ट्रैक इजंट इट। टाइम नाउ दो, लेट्स टेक यू आउट ऑफ दिस वर्ल्ड विद योर फ्राई फायरक्रैकर।
1: टेकिंग यू आउट ऑफ दिस वर्ल्ड विद रेडियो वैली'स फ्राई फायरक्रैकर।
0: Dedicating this one to sare papa aur papa ke bacche।

0: Lighting up your evening with Radio Wally's Fri-Yay Firecracker.
1: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
2: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
3: Asiana, in association with ZTV and Leica Radio, brings you the Asiana Lifestyle Show on Sunday the 31st of May at the new Bingley Hall in Birmingham,
1: where weddings, fashion, jewellery, beauty and lifestyle come to life under one roof.
3: Meet the UK's top brands, discover exclusive offers and get ready to be inspired and entertained in style.
1: Register now for free tickets at asianalifestyleshow.com.
3: For sponsorship and details, call 07803 633 926.
4: This Eid, skip the queues and save with Umbala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and Motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
5: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 Belgrave Road, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में. कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन, जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एग.
6: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
7: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
8: खुद से भी ज्यादा.
6: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
8: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
6: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 89-8394.
0: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th. A true Radio Wally Cracker Classic. Name the 90s number. This is Leica.

0: है लाइका रेडियो
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 02085748410
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
6: Packed for the trip? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
6: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
8: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
9: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. And Indian summer is back.
10: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
9: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
10: Or sales at leicamedia.co.uk.
3: This is the Leica Radio Network. Broadcasting across the UK. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. The greatest Asian love songs across the Leica Radio Network.

लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी. This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.